0: था। सीजनिंग प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट, सीएनसी मशीन, पैनल सॉ, ऑटो एज बैंडिंग, कोल्ड प्रेस र सिस्टमैटिक पेंटर बूथ लगाए संपूर्ण सुविधा।
1: ड्यूरेबल, स्टाइलिश र इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फिनिशिंग जिससे तपाईको घरको इंटीरियर लाई टिकाऊ र सुंदर बनाउँछ। थप जानकारी का लागि ग्लोबल इंटीरियर लाई संपर्क गर्नुहोस्।
2: विश्वास र टिकाऊ हुने सम्पूर्ण फर्निचर का सामग्री एउटै छाता मुनि।
3: हजुर, बेड, दराज, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, किचन, पार्केटिंग काठको रेलिंग, सोफा, पार्टेशन लगायत घर, अफिस, होटल का सम्पूर्ण इंटीरियर काम को लागि ग्लोबल इंटीरियर एण्ड कास्ट उद्योग सम्झनुहोस्।
4: प्रोप्राइटर लील कार्की, फोन 98570-72397 र 98475-42914। ग्लोबल इंटीरियर एण्ड कास्ट उद्योग प्रणाली तिलोत्तमा छ, गोरकट्टा।

मैं खडेरी ढूर बनकर भुर्र उठू। तब तू मोर लाग पानी बनकर बरसत। एक घटी के मिलन के बाद वो एक काम के प्रकाश तुहिन बाह बना कर उड़ा कर फिर से मन से दूर ले जा। ये प्रकृति के नियम हमा मिलन असंभव बा, कारण तू बद्री मैं धरती। हाँ वो एक दूसरे से दूर रख पे करल कब्बुनी और रेना मैया के एक उदाहरण हो दिल के पता। वो एक अटूट मैया के अंश हो दिल के पता।

0: वात्सल्य बुटवल क्लिनिक सुखनगर बुटवल सम्पर्क 9803364660।
1: रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्ट्ज।